0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गए, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गए, मालिक जो महबूब मोहम्मद को ने के खा

मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद, सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं, वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमाते हैं।

आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे देखता हूँ फिर बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर पे है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर। हाँ।

0: आए जग सारा, सफर का बेड़ा पार तू कर दे बनिया दे सरदारा।
1: ऐसा नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद है।

आशिक बैठे हैं, फिर अभी उतनी आवाज नहीं आई। मैं फिर वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर बरगा सकीन कोई नहीं।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4। साई साई।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैदराबाद के लाॻापियल रिकॉर्ड अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत तहरीरी हुकुमनामे में चयो आहे दरख़्वास्त गुज़ारनि मूजिब उन्हनि खे कमज़ोर ऐं गैर मक़तूल बुनियादनि ते नाकाम करार ॾिनो वियो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चवण आहे त उमेदवार मेरिट ते नाकाम थिया आहिनि ऐं नतीजनि में बदनीती न कई वई आहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदराबाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां दरख़्वास्त रीजननि जा तहरीरी कागज़ हासिल करे इम्तिहानी कापियूं अदालत पारां मुक़रर मजिस्ट्रेट जे मौजूदगी में डिसेल कयूं वञनि। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लाॻापियल अख़्तियारनि एडवोकेट जनरल सिंध खे अदालती हुकमनि जे रूह मुताबिक़ सहकार करण जी हिदायत बि करे छॾी। ईरानी सदरान पाकिस्तान जा थोरा मञण लाइ अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। सनसाजीअ लाइ मुल्क जे गादी वारे शहर खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सींगारियो वियो आहे। परॾेही तर्जुमान मूजिब ईरानी सदर हिकु वफ़द सां गॾु इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं पाकिस्तान जे सियासी तौर आस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि दौरान पाक ईरान ॿतरफ़नि लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरानी सदर मौजूदा सूरतहाल में मुस्बत किरदार ते पाकिस्तान जा थोरा मञींदो। अमरीका स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जे नतीजनि में ईरान मथां तेल विकिरे जी पाबंदी आरज़ी तौर हटाए छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे 60 ॾींहनि लाइ तेल विकिरे या ख़रीद करण लाइ लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 21 अगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल शयूं विकिरो करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयुनि बि अमरीका खे बि विकिरो करे सघंदो। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि तहत अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जे रोड मैप मंज़ूर कयो वियो। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंप्लेक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़ ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। आमना हुरमज सामूंडी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आमना हुरमज में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾी पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आमना हुरमज में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जे विच अचवञ पिण बहाल आहे। रोड़ीअ में जवाबदारनि पंजाब वासी नौजवान खे कातनि सां कोई बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे जवाबदारनि पुराणे तकरार तां साहिवाल वासी 32 साला नौजवान मुर्तज़ा खोखर खे क़तल कयो आहे। नौजवान जो बिरादरीअ जे माण्हुनि सां तकरार हलंदड़ हो। ॿिन माण्हुनि जे क़तल केस में मुलिस्म रहण बाद साहिवाल खां रोड़ी में अची रहियो हो। रहिश अख़्तियार कई हुई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GAFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: सोचता हूँ कि

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ईरानी सदर मसूद परशान पाकिस्तान जो थोरा मञण लाइ इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। संदस आजिया लाइ मुल्क जे गादी वारे शहर खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो पियो। बड़ी तर्जुमान मूजिब ईरानी सदर हिकु वफ़द सां गॾु इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं पाकिस्तान जे सियासी तौर अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि दौरान पाक ईरान बतरफ़ा लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरानी सदर मौजूदा सूरतहाल में मस्बत किरदार ते पाकिस्तान जा थोरा मञींदो। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां हुन जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। अमन हुरमत मां जहाज 60 ॾींहनि ताईं बिना ट्रिप जे गुज़री सघनि था। जहाज खे रुगो स्टैंडर्ड न्यूगेशन या सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सख़्त थी सघे थो पर मुआदो हासिल करण जोॻो आहे। ईरान अमरीका डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी अरब कतर मिस्र ऐं इमारत असारसे जे अमल खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कारीबाज चयो आहे त $12 अरब जे ज़ब्त कयल असासनि जी बहाली वारे मुआदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। अबन हुरमज़ में जहाज़नि जी अचवञ ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण इतफ़ाक़ थियो आहे। अबन हुरमज़ इंतिज़ामी ईरानी बंदोबस्त तहति ॻाल्हियूं थींदियूं। ॻाल्हियुनि दौरान इलाक़ई सलामती ख़ुदमुख़्तियार जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। इसराइल होद ते क़ाइम लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइली फ़ौज सरबराहु गॾियल बयान में चयो आहे त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि। अमरीका स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जे नतीजे में ईरान मथां तेल विकिरे जी पाबंदी आर्ज़ी तौर हटाए छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे 60 ॾींहनि लाइ तेल विकिरे या ख़रीद करण लाइ लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिबि ईरान 31 अगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रोकेमिकल शयूं विकिरो करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारनि शयुनि अमरीका खे बि विकिरो करे सघंदो। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि तहत अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर कयो। लबनान में जंग बंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। आबनाए हुरमज़ सामूरी जहाज जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आबनाए हुरमज़ में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने जे हथियारनि जी मानियुनि लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुरमज़ में सूरतहाल बहितरी जहाज़नि जे अचवञ बहाल आहे। पुलिस ॿुधायो आहे त जवाबदारनि पुराणे तकरार तां साहिबाल वासी 32 साल नौजवान मुर्तज़ा खोखर खे क़तल कयो। नौजवान जो बिरादरी जे माण्हुनि सां पुराणो तकरार लधड़ हो। ॿिनि माण्हुनि जे क़तल केस में मुलस रहण बाद साहिबाल खां रोडी में अची रिहाइश अख़्तियार कई हुई।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा।
2: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए जीए FM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252578 6।
8: जी हा, 3135525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 331 5 7 86।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आबनाए हुर्मुज़ सामूंडी जहाज़नि जे अच वञ लाइ मुकमल तौर ते खुली पियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे चयो त ईरान आबनाए हुर्मुज़ में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते थियण जे मुआणे लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुर्मुज़ में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे।

रोड़ीअ में जवाबदारनि पंजाब वासी नौजवान खे कातन सां कुही बेदर्दीअ सां क़त्ल करे छॾियो। पुलिस चवण आहे त जवाबदारनि पुराणे तकरार तां साहिवाल वासी 32 साल नौजवान मुर्तज़ा खोखर खे क़त्ल कयो आहे। नौजवान जो पुराणो बिरादरी जे माण्हुनि सां तकरार हलंदड़ हो। ॿिनि माण्हुनि जे क़त्ल में मलूस रहण बाद साहिवाल खां रोड़ीअ में अची रिहाइश अख़्तियार कई हुई।

बलीर जिला के इब्राहिम मैत्री में फायरिंग एक गड़ो मारजी पो नई आबादी वाले इलाके में फायरिंग में 55 साल मोहम्मद इकबाल मारजी पो इतलाती रेस्क्यू रजाकारन पहुंची मकसूल जो मर्ड अस्पताल मुंतकिल किया।

0: कराची में 12 कलाकनि दौरान रोड हादसनि में ॿिनि औरतनि समेत 5 ॼणा फौत। कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क वेझो कार जे टकर में 60 साला पीउ-पुटु औरत फौत। कयूमाबाद चोरंगी वटि टालो जो मोटरसाइकिल खे टकर, नौजवान फौत। गार्डन वारे इलाइक़े में रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल 50 साला शहरी दमधणीअ वारे कयो। पंजाब चोरंगी अंडर बाईपास वटि टालो जे टकर सां ज़ख़्मी थियल नौजवान फौत, हिकु ॼणो थरे ते फौत थी पियो। कराचीअ में एफबी एरिया में फ्लेट मां औरत जो फाहु लॻल लाश, पुलिस मूजिबि औरत जी सुञाणप सादिया ज़ाल आतिफ तौर थी आहे। जांच जारी आहे। उमरकोट वेझो बनी में कम कंदड़ नौजवान ते हमिलो, तशद्दुद ऐं तज़लील, केस दाख़िल, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। घोट वासरबा वासी नौजवान कलंदर बख़्श ते 7 जवाबदारनि हमिलो कयो, नाज़ेबा वीडियो ठाहे वायरल कया विया। मुतासिर नौजवान कलंदर बख़्श कोकरापार थाणे ते मुराद सोबत हबीबुला समेत 7 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करायो, इंसाफ़ जो मुतालबो कयो। आयसन मां मासूम निगरी मुबैना तौर ते शइ वठण बहाने अगवा, वारसनि जो एहतजाज। वारसनि चयो त मंचरी पाड़े मां जवाबदार 7 साला इरशाद मल्हा खे अगवा करे विया। पुलिस खे इतलाउ ॾिनो पर पुलिस कुझु न करे सघी। बारडी बाज़ियाब न थी त इंडस हाईवे ते धरणो हयो वेंदो।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड सीड की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
6: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जी एफ एम 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरानी सदर मसूद बशियान पाकिस्तान जा थोरा मञण लाइ तेहरान खां इस्लामाबाद रवानो थी वियो। आज़ादीअ लाइ मुल्क जे गादी वारे शहर खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो पियो। परडेही तर्जुमान मूजिब ईरानी सदर हिकु वफ़द सां गॾु इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं पाकिस्तान जे सियासी तौर अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि दौरान पाक ईरान ॿतरफ़न लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरानी सदर मौजूदा सूरतहाल में मस्बत किरदार ते पाकिस्तान जा थोरा मञींदो।

ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां उनजो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल ससासन ऐं लबनान ते टेक्निकल वर्किंग ग्रुप चम कंदा। आबनाए हुर्मज़ मां जहाज़ 60 ॾींहं ताईं बिना ट्रिप जे गाॾी गुज़री सघंदा। जहाज खे रुगो स्थिर सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। इहो सख़्त थी सघे थो पर मुआदो हासिल करण चुको आहे। ईरान अमरीका डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र ऐं अमीरात सालसी जे अमल खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कालीबाद चयो आहे त 12 अरब डॉलर जी ज़ब्त कयल ससासन जी बहाली वारे मुआदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। आबन हुर्मज़ में जहाज़नि जे अच वञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। आबन हुर्मज़ जो इंतज़ाम ईरानी बंदोबस्त तहत ई थींदो। ॻाल्हियुनि दौरान इलाक़ाई सलामती ख़ुदमुख़्तियार जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। इसराइल होड ते क़ाइम। लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइली फ़ौजी सरबराह जे गॾियल बयान में चयो आहे त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि। आबन हुर्मज़ सामूंडी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आबन हुर्मज़ में सुठा क़दम खणी रहियो आहे। ईरान मुआदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आबन हुर्मज़ में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे। सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो ॾिनो वञे, 44% घटि मिले थो। ज़रात खाते जे वज़ीर मोहम्मद बख़्श महर जो सिंध असेंबलीअ में ख़िताब। मोहम्मद बख़्श महर चयो त पाणी खे ज़ाया थियण खां बचाइण ऐं पाणी चोरी रोकाइण लाइ निज़ाम खे बहितर बणाइणो पवंदो। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी

करप्शन केस में गिरफ्तार पीआरटी येलो लाइन जो अगुणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी सुबाई एंटी करप्शन कोर्ट में पेश जज मोकल सब के सिटी कोर्ट में पेश किया वो जमीर अब्बासी के लाहौर में गिरफ्तार करने बाद कराची मुंतकिल किया वो हो जमीर अब्बासी से पीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार के 8 अरब रूपया अगवा देने जो इल्जाम है। रोड़ी में जवाबदार पंजाब वासी नौजवान के कातन से कोई बेदर्दी से कतल कर छो पुलिस चवण है ही जवाबदार पुरानी तकरार तक साहिवाल वासी 32 वर्ष जो नौजवान मुर्तजा खोखर के कतल किया है। नौजवान बरादरी मानून से तकरार हलंदड़ हो बिन मानून के कतल केस में मुलस रहने बाद साहिवाल का रोड़ी में अची रिहाइश अख्तियार कई हुई। बलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में फायरिंग एक चुनौ मारजी पो नई आबादी वाले इलाके में फायरिंग में 55 साल मोहम्मद इकबाल मारजी पो इतला से रेस्क्यू रजाकार पहुंची मकतूल जो मड़ अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में 12 कलाकों दौरान रोड हादसे में बिन औरतन समेत 5 जना फौत कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क वेजो कार की टक्कर में 60 साल पीरसन औरत फौत कयूमाबाद चौरंगी पर ताला जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगो नौजवान फौत गार्डन वाले इलाके में रोड हादसे में जख्मी थियल 50 साल शहरी दम डेई छो पंजाब चौरंगी अंडर बायपास पर ताला के टक्कर सब जख्मी थियल नौजवान फौत एक जनो थरे से फौत थी पो हो। कराची में एफबी एरिया में फ्लैट में औरत जो फाउ लगल लाश पुलिस मौजूद औरत जारी है। उमरकोट वेझो बनिया में कम कर नौजवान से हमलो तशद्दुद तजलील केस दाखिल ब जवाबदार गिरफ्तार गोट वासरवा वासी नौजवान कलंदर बख्श के 7 जवाबदार हमलो कयो नाजेबा वीडियोज थाए वायरल किया वा मुतासर नौजवान कलंदर बख्श खोखरा पार थाने ते मुराद सोबत हबीबुल्ला समेत 7 जवाबदार खिलाफ केस दाखिल करायो है। इंसाफ जो मुतालबो आयसन बा मासूम निगरी मुबैना तौर से शे वठे जान बहाने अगवा वारसन जो एहतजाज वारसन चौत मंचरी पाड़े में जवाबदार 7 साल इरशाद मल्हा के अगवा करे व्या पुलिस के इतला दिनों पर पुलिस कुछ नती करे बाड़ी बाजियाब न थी इंडस आवे धनु है वेंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की जोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
6: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252586।
6: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

حسین فوج پہ جب آستی

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: चल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, अल चल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अगर हम अरबों रुपए खर्च करते तो तब भी ये हम अचीव ना कर पाते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर चाहे वो जौहरी असाजे हैं चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं चाहे उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये एमओयू इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम होगा।
1: ईरान ए अमरीका विच में जंग बंदी थी वही इंदड़ 60 दिन दौरान बिन्हीं मुल्क विच तो यकीन कायम थो। वजीर आजम कौमी असेंबली में खिताब शहबाज शरीफ चुर पाकिस्तान वरी सच्चाई से बिन्हीं धरन विच में वेछा घटाने लाइ कोशिश कई उन मामले ते पाकिस्तान जो किरदार तारीखी आहे। ईरान अमरीका मुआहदे से सारी दुनिया में अमुन कायम थो अल्लाह जेका इज्जत दिनी वह अरबे रुपये में भी ना मिली।

0: ईरानी सदर मसूद पजलखान कुछ देर में पाकिस्तान के दौरे से इस्लामाबाद पहुंची रहा है। मौजूद मेहमान की आजियां लाए समूर तैयारियों मुकम्मल। परडे तर्जमान है ईरानी सदर मसूद पजलखान सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए बिन आला अख्तियार से मुलाकातू कद। मुलाकात दौरान व्यापार तवानई ए सरहदी सहकार से गाल्दी। ईरानी अख्तियारों जो चवण है ईरानी सदर के दौरे जो मकसद ईरान अमरीका गाल में सालसी रहा पाकिस्तान की कोशिशों जहा थोड़ा मजण है। ईरान यूरेनियम बाहर मोकलण बदला उन रचाव घटाइंद। नायब वजीर आजम इसाक डार जो अरब मीडिया के इंटरव्यू। इसाक डार चो तो न्यूक्लियर फाइल जब्त थियल असासन ए लबनान से टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कम कंदा। अब हुरमुज में जहाज 60 दिन ताई बिना ट्रिफ के गुजरी सकन था। जहाजन के रुगो स्टैंडर्ड न्यूगेशन या सर्विस फीस देनी पवी। गाल बो मरेलो सख्त थी सके तो ईरान अमरीका डील में को नाकारी नुकतो ना है। सऊदी कतर मिस्र ए इमारात सालसी के अमल की हिमायत कन था। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर गाजीबाद चाहे तो 12 अरब डॉलर जो जब्त कल असासन की बहाली वे मुहिदे के हतमी शकल डिनी वही। आबनाए हुरमुज में जहाजन के अचवन के राबते जो निजाम कायम करण जो इतफाक थियो है। आबनाए हुरमुज के इंतजाम ईरानी बंदोबस्त तहत थींदो। गालियों दौरान इलाकई सलामती खुद मुख्तियार की जमानत देने ते इतफाक थियो। आबनाए हुरमुज सामुंडी जहाजन के अचवन मुकम्मल तौर से खुली वह है। ईरान एतमी शफाफियत के यकीन बनाने लाइ राजी थी वेंदो। अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया से गाल बोल कंदे ईरान आबनाए खड़ी रहा। ईरान मुहिदे की पाबंदी न कई तो जो जरूरी होंद वो कंदी। ईरान वे पैमाने से हथियार के मुआयने लाए राजी थी वेंदो। आबने हुरमुज में सूरत हाल बेहतरीन ए जहाजन की अचवन बहाल है। इसराइल होड से कायम। लबनान में फौजी कार्रवाई जारी रख वजीर इसराइली फौज सरबराज गड़ियल बयान में इसराइली फौज ए शहर जहा खतरा खत्म करने लाइ कार्रवाई जारी है। दखण लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने लाइ कार्रवाई जारी।
1: क्लिक अप रिप्लेस लाइक 5 different tools फॉर मी। वी हैड टास्क्स इन वन ऐप, डॉक्स इन अनदर, मीटिंग्स समवेयर एल्स। इट वाज कंप्लीट कैओस। देन वी मूव्ड एवरीथिंग टू क्लिक अप एंड व्हेन वी टर्न्ड ऑन द एआई एजेंट्स, game changer. It's not just AI chat. It actually runs workflows inside your workspace. It feels like we added support without adding headcount. If you're leading a team, open a free ClickUp workspace and try the AI agents.
0: So, Evanville mein MNA Alia Kamran je tarmeem radd kare chadi. Ajlas subah subah jo 11 baje time multavi.

करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ्तार रगुण प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी पंजन दिन जिस्मानी रिमांड से एंटी करप्शन हवाले जमीर अब्बासी के हथकड़ियों हाँ सिटी कोर्ट में पेश किया वो एंटी करप्शन की जांच ऑफिसर जमीर अब्बासी जो 14 दिन जो जिस्मानी रिमांड देने की सदा कई अदालत 5 दिन जो जिस्मानी रिमांड मंजूर कर वरतो। जमीर अब्बासी से बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार के 8 अरब रुपया अगवा देने का इल्जाम है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

पसीना आया हुआ है, अदू के चेहरे पर पसीना आया हुआ है, अदू के चेहरे पर

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अगर हम अरबों रुपए खर्च करते तो तब भी ये हम अचीव ना कर पाते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमरीका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोजन एसिड्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये एमओयू इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम होगा।
1: ईरान ए अमरीका विच में जंगबंदी थी वही इंदड़ 60 दिन दौरान बिन्हीं मुल्कन विच में टेक्निकी मामलन ते गालू थी दियूं। पक्तो यकीन आहे त मुफ्ती मफामती यादाशनामे तहत चढ़ादार अमुन कायम थी। वजीर आजम जो कौमी असेंबली में खिताब शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान वड़ी सच्चाई से बिन्हीं धुरियन विच में वेझा घटाइण लाइ कोशिश कई। उन मामले ते पाकिस्तान जो किरदार तारीखी आए। ईरान अमरीका मुआहदे से सारी दुनिया में अमुन कायम थी। अलावा जेका इज्जत दिनी या अरबी रुपये में भी नाहे मिलंदी।

ईरान यूरेनियम ॿाहिरि मोकिलण बदिरां जो रचाव घटाईंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। अबना हुरबज मां जहाज 60 ॾींहनि ताईं बिना ड्रिफ जे गुज़री सघनि था। जहाज़नि खे रुगो स्टैंडर्ड योगेशन या सर्विस फीस ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरेलो सख़्त थी सघे थो। ईरान अमरीका डील में को फर नाकारी नुक़्तो नाहे। सऊदी, कतर, मिस्र ऐं इमारती सालसी जे अमल जी हिमायत कनि था। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाखिर कालिबाद चयो आहे त 12 अरब डॉलर जी ज़ब्त कयल असासन जी बहाली वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। आबनाए हुरबस में जहाज़नि जे अचवञ ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। आबनाए हुरबस जो इंतज़ाम ईरानी बंदोबस्त तहत ई थींदो। गारियुनि दौरान इलाक़ाई सलामती ख़ुदमुख़्तियारी जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो। आबनाए हुरबस सामूरी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर ते खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीन बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान आबनाए हुरबस में सुठा कदम खणी रहियो आहे। ईरान मुआहिदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूरी हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुरबस में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे। इसराइली होदे ते क़ाइम लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइली फ़ौजी सरबराह जे गॾियल बयान में चयो वियो आहे त इसराइली फ़ौज ऐं शहरनि जा ख़तरा ख़तम करण लाइ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। ॾखण लबनान में सिक्योरिटी ज़ोन बरक़रार रखण लाइ कार्रवायूं जारी आहिनि।

0: क़ौमी असेंबली अरिड़हं हज़ार 771 अरब रुपियनि जे वफ़ाक़ी बजट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली ने माली साल 2026-27 जे वफ़ाक़ी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी। फिनांस बिल साल 2026-27 बि मंज़ूर। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब फिनांस बिल ऐवान में पेश कयो। ऐवान बिल में MNA आलिया कामरान जी तरमीम रद्द करे छॾी। इजलास सुभाणे सुबुह जो 11 वॻे ताईं मुलतवी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

दग जो ओठी तरस सजाए वगुनी गर जो ओठी तरस सजाए वगुनी गर जो पांज नढड़े दे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठिया पुत्र अहवाल तदस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठिया

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साइन सुगरा।

मुनवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जद बुधन लगो ओठी पे अख्तियार थी रोन लगो लफ्ज़ बचड़िया जान जद बुधन लगो ओठी पे अख्तियार थी रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयों हेडा कशाला कन जे करे जग खलक्यो खुदा वंद जन जे करे कयों हेडा कशाला

0: महेसर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अडे अली असगर जो ओठी तरस सजाए ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अडे अली असगर जो ओठी तरस सजाए
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अपना शहर

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी सदर मसूद पशिकान पाकिस्तान के दौरे इस्लामाबाद पहुंची वो सदर आसिफ अली जरदारी वजी अजम शहबाज शरीफ नायब सदर इसहाक डार घरू वजीर मोहसिन नकवी पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी बेन मोजिज मेहमान आज कई ईरानी सदर के एक्वीह तोपन की सलामी भी डिनी वही परेही तर्जुमान है ईरानी सदर मसूद पशिकान सदर आसिफ अली जरदारी वजी अजम शहबाज शरीफ बेन आला अख्तियार मुलाकातन तवानाई सरहद एरन जो चवण है ईरानी सदर के दौरे जो मकसद ईरान अमरीका गालियन लाए पाकिस्तान की थोरा मनना है।

ईरानी पार्लियामान स्पीकर पाकर कालीपाप $12 अरब से जब्त कयल असासन जी बहाली वारे मुआदे के हतमी शक्ल डिनी वही आबना हरमुस में जहाजन की अचवन से राबते जो निजाम कायम करने जो इतफाक थो है आबना हरमुस जो इंतजाम ईरानी बंदोबस्त तहत ही थी गालियन दौरान इलाकई सलामती खुद मुख्तारी की समर्थ दियण इतफाक थो।

0: कानून में ना हो, किसी की जरूरत है कि कोई किसी को ऐसे पैसे बताए? कानून में प्रोविजन था कि आप जल्दी, मैंने 9 महीने पहले काम खत्म करवाया, अभी भी वही ठेकेदार 9 महीने पहले खत्म करने का लिख के दिया है, बैंक गारंटीज पड़ी हुई है। अभी मैं अब क्या बोलूं आपको, मेरा तो मामला चल रहा है, वरना मैं आपको एक एक चीज का मैं जवाब अच्छे तरीके से और भी दे सकता हूं। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ताला मैं रिस्पेक्ट करता हूं कानून की, मैं खुद कानून का मुहाफिज रहा हूं। भाई मैं क्या करता, मेरे घरों पे रेड चलते थे, मैं प्रोटेक्ट।
1: करप्शन केस में बीआरटी येलो लाइन जो गिरफ्तार, अगुणो प्रोजेक्ट डायरेक्टर समीर अब्बासी 5 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले। समीर अब्बासी खे हथकड़ियूं हणी सिटी कोर्ट में पेश कयो वियो। एंटी करप्शन जी जांच आफिसर समीर अब्बासी जो 14 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड ॾियण जी इस्तदा कई। अदालत 5 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंजूर करे वरितो। समीर अब्बासी ते बीआरटी येलो लाइन प्रोजेक्ट जे ठेकेदारनि खे 8 अरब रूपया अॻुवाट ॾियण जो इल्ज़ाम आहे। समीर अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कंहिं जी जरूरत आहे जो बिना कानून जे को अॻुवाट अदायगी करे? हर शइ कानून मूजिब कई आहे, मुंहिंजा मामला हलंदड़ न हुजनि हा त हर शइ जो जवाब ॾियां हा।
2: आप सुन रहे थे
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहल लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.5।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

ईरान यूरेनियम बाहर मोकिलण बदिरां उन जो रचाव घटाईंदो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक डार चयो त न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। आमना हुर्मुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहनि ताईं बिना टेरिफ जे गुज़री सघनि था। जहाज़नि खे रुगो स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फी ॾियणी पवंदी। ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सख़्त थी सघे थो। ईरान अमेरिका डील में को नाकारी नुक़्तो नाहे शामिल। सऊदी ट्रैकड़ीअ जे अमल जी हिमायत कयूं था।

ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ चयो आहे त 12 अरब डॉलर जी ज़ब्त कयल असासनि जी बहालीअ वारे मुआदे खे हतमी शिकिल ॾिनी वई आहे। आबनाए हुरमज में जहाज़नि जे अच वञ ते राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण जो इतफ़ाक़ थियो। आबनाए हुरमज जो इंतज़ाम ईरानी बंदोबस्त तहती थींदो। ॻाल्हियुनि दौरान इलाक़ाई सलामती ऐं ख़ुद मुख़्तियारी जी ज़मानत ॾियण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। आबनाए हुरमज सामूंडी जहाज़नि जे अचवञ लाइ मुकमल तौर खुली वियो आहे। ईरान एटमी शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणाइण लाइ राज़ी थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त ईरान आबनाए हुरमज में सुठा कदम खणी रहियो आहे। ईरान मुआदे जी पाबंदी न कई त जेको ज़रूर हूंदो उहो कंदासीं। ईरान वॾे पैमाने ते हथियारनि जे मुआइने लाइ राज़ी थी वेंदो। आबनाए हुरमज में सूरतहाल बहितरीन ऐं जहाज़नि जी अचवञ बहाल आहे। इसराइल होड ते क़ाइम। लबनान में फ़ौजी कार्रवाई जारी रखण जो ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन याहू

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान जी अहम दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल ईरानी सदर मसूद पशकियान जी सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समार मुलाकात ऐवान सदर पहुंचण ते सदर जरदारी ए बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान सदर जी आजियां कई वजीर आजम हाउस आमद ते सदर मसूद पशकियान के गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात दौरान ईरानी सदर अमरीका ईरान चिकतान घटाने लाए पाकिस्तान की कोशिशों असायती किरदार की वाखाण कई। ईरानी सदर की इस्लामाबाद पहुंचण से सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ नायब सदर इसहाक डार ए बेन पारा आजियां मोइज़ मेहमान के 21 तोपन की सलामी भी डिनी वही। ईरानी सदर जो जहाज पाकिस्तान के हवाई हदन में दाखिल थे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजन पारा बेसलामी पेश कई है।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: तुझ सुगराती राहु निहारे रोई रोती।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: जी सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: DA

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

ننگے سر پپیور لوں بازار میں، ننگے سر پپیور لوں بازار میں،

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंह के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।